सुख शांति नहीं। गोविंद कृष्ण जय गोपाल कृष्ण जय गोपाल बाल बाल कृष्ण जय।

शान्तिपुत्री क्षमं पुत्र सत्यं माता पिता ज्ञानं धर्मो भ्रात दया सखी